चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

टेकन फ्रॉम ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा अरिजीत सिंह। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। इससे मुझे याद आया, यस्टरडे समवन मैसेज्ड मी रैंडमली ऑन माय इंस्टाग्राम, माय पर्सनल इंस्टाग्राम @shabby_sahi. It's someone who follows me. I have no idea who they are, which part of the world they are following me from. But they just asked me one simple question. Hey, which kajal do you use, if you don't mind my asking? I found that really strange. 07925-700-272, the number to WhatsApp me on. It's a Friday.

0: सब्जी एक कैसे खोल रही हो, तुम आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते का ये गाना अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज में। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज फ्राइडे की सुबह शबनम साही के साथ। सुगा, थैंक यू फॉर द स्वीटेस्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट, आई हैड माय डिजर्ट फॉर द डे। मेघना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओमार इन मैनचेस्टर, वेलकम टू द शो। वैशाली इन साउथ वुड फॉर, आप कहती हैं कि सतलुज टचेस अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और आप कहती हैं कि व्हेन फिल्म्स लाइक दीज आर मेड क्लियरली दे मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, राइट? दीज फिल्म्स एजुकेट पीपल बट एट द सेम टाइम दे कैन इनिशिएट अनरेस्ट इन द अफेक्टेड कम्युनिटीज। आप ये भी कहती हैं कि कुछ ऐसा ही सिमिलर माचिस में भी दिखाया गया था, वेयर तबूज ब्रदर, इफ यू रिमेंबर, वाज टेकन अवे बाय द पुलिस एंड नो वन रियली न्यू व्हाट हैपेंड टू हिम लेटर। हमारे देश में कुछ ऐसी अट्रोसिटीज हुई हैं एंड यू सेइंग दैट द इफेक्ट्स ऑफ सच अट्रोसिटीज आर कंप्लीटली अनफैदमेबल। थैंक यू वेरी मच वैशाली इन साउथ Woodford. 07925 700 272 is the number to WhatsApp me on. Suga is saying, you've just mowed the lawn while listening to Sunrise. Have you made that beautiful crisscross Wimbledon and Lord's Wala pattern? Crisscross on his stripes. Did you do it? Please say no, because I believe it takes a lot of effort.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
0: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 10 p.m. on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Filmmakers who dare to be different and talk about the things that people usually don't really think of as entertainment. Honey Trehan, one of them. So is Imtiaz Ali, by the way. मैं वापस आऊंगा धीरे धीरे ऑन द यूके'ज बिगेस्ट एशियन मिक्स, जहां भी आप सुन रहे हैं। वेलकम टू द शो।

अगर मेरी है फसाना तेरा, तू अगर मेरी है जमाना मेरा, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहाँ तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ दरिया दुआ, गहरा हुआ उफ, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस सॉन्ग। Rediscovering this beauty, this gem all over again. Arijit Singh, Arman Khan, taken from the soundtrack of Dhurandhar. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज फ्राइडे द 10th की सुबह शबनम साही के साथ. A bit of this, a bit of that, a bit of chit, a bit of chat, the last and final hour. Suki Sandhu in Bristol, thank you for your beautiful message. Dear SS, keep your unique sunshine for sunrise.

0: गाठिया खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज 28 वॉटफोर्ड रोड वेम्बली ओपन ट्यूजडे टू संडे।
1: Friday nights on Sunrise brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
2: Hey, join me, Ajay Nagar, every weekend from 10 AM right here on Sunrise Radio for brunch. We've got fun, interactive games, the latest headlines and some awesome music, keeping you in tune, informed and entertained. So that's every weekend from 10 AM right here on Sunrise Radio.

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद।